0: ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6:00। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार

0: सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमरीका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमरीका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार कलो आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी जयपुर प्रचार करछु आजिर भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना कार्यक्रमर प्रथमे सुनंतु संस्कृत वंदना शिल्पी सुनंदना पटनायक।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या, देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: दिल्ल्यां ICWA इति भारतीय विश्व प्रकरणानां परिषदः रजन्त जयन्ती समारोहे समापन सम्बोधनं कुर्वन् डॉ जयशंकरः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अशान्तियुते वैश्विके परिवेशे भारतस्य उदयः निश्चितः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल केरल माहे चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमान कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे आयोजितायां द्वितीयायां विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां भारतम् अफगानिस्तान दलं 7-0 पराजितम् इति वार्ताः।
1: सुनिले संस्कृतरे संवाद रिले करि प्रचार कलो आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी जयपुर सुनंत आज प्रचार हेबाक थिबा कार्यक्रम संपर्क रे किछि सूचना सकाळ 7:25 रे सुनिबे बन्नाली क्रमरे विविधा एथिरे स्थान पाइछि संतोष ट्रॉफी रे खेलिथिबा फुटबॉल खेलाड़ी जितू मुदुलिंक सहित साक्षात्कार प्रायोजित कार्यक्रम रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र सकाळ 8:30 रे हिंदी चलचित्रर गीत शुणिबे सकाळ 9:00 रे पूर्वाह्न 10:30 रे मध्याह्न 12:00 रे एवं दिन 2:15 रे लोकगीतर कार्यक्रम रे शुणिबे पाला दिन 11:00 रे विषय रहिछि भक्त अंबारिका परिवेषण करिबे सुदर्शन महापात्र एवं साथी दिन 11:30 रे शुणिबे दासकाठिया विषय रहिछि महानदी कन महादानी कर्ण परिवेषण करिबे रामहरि पाढ़ी एवं रविनारायण शतपथी सौरभाषार कार्यक्रम तारभा प्रचारित हेबो दिन 12:30 रे दिन 8:20 रे शुणिबे घर व घरणी एथिरे स्थान पाइछि मासिक साहित्य पत्रिका आलेखिका संपादकीय नारीर निरवतारु नुआ स्वर पर्यंत पल्लवी नायक एवं जयंती भैया कविता एवं इतिश्री मल्लिक गल्प सुनिले आज प्रचार हेबाक थिबा कार्यक्रम संपर्क रे किछि सूचना आकाशवाणी जयपुर आमर परवर्ती कार्यक्रम प्रथमे आंचलिक संवाद परे रहिछि आमर स्वास्थ्य परे परे शुणिबे ओडियारे संवाद रिले करि प्रचार करिबा आकाशवाणी कटक केन्द्ररु शुणिपारिबे विज्ञापन विरती परे।

0: तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: ओमान उपकूल रे वाणिज्यिक जहाज एमटीएल गया उपरे आक्रमण संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर रे श्री जयसवाल कहिछंती एभळी आक्रमण भारत पय आदौ ग्रहणीय नुहे। आंतर्जातिक जलपथ देई मुक्त तथा सुरक्षित नौवाणिज्य कारोबार पुनःस्थापन करबाकु भारत दाबी करिछि। एही जहाज रे 14 जन भारतीय नागरिक नाविक भाबे कार्यरत थिले। सेमानक मधरे 13 जनक उद्धार करा जायतिबा बळे जने निखोज थिबा श्री जयसवाल कहिछंती। ओमान कर्तृपक्षक सहायता रे संधान उद्धार कार्य जारी रही। जैसे मोहम्मद मुख्य मासूद आझार पाकिस्तान पक्ष 70 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा कर संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर में श्री जयसवाल कहते पाकिस्तान चतुरतापूर्ण पदक्षेप भारत नुआ नुह। पाकिस्तान को मासूद विरूद्व कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को पड़े। अन्य एक प्रश्नर उत्तर में श्री जयसवाल कहते भारत रूस मध्य शक्ति सहयोग द्विपाक्षिक सहभागित एक गुरुत्वपूर्ण माध्यम। उभय देश परमाणु क्षेत्र में परस्पर को दीर्घ समय धरी सहयोग करडानकुलम शक्ति प्रकल्प भारत और रूस सहयोग एक सफल उदाहरण बोली श्री जयसवाल कहते। श्री जयसवाल कहते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अवसर में वैदेशिक मंत्री डॉ एस जयशंकर और साउदी प्रतिपक्ष द्विपाक्षिक आलोचना बैठक उभय पारस्परिक स्वार्थ संबलित आंचलिक तथा वैश्विक प्रसंग उपर मत विनिमय भारत आमेरिका मिलित सामरिक युद्धाभ्यास 22वां संस्करण गतकाली उत्तराखंड आउली ठारे आरंभ होईछि। उद्घाटनी समारोह रे आउली विदेश तालीम प्रक्रिया रे अनुष्ठित होईतिला। एही समराभ्यास एककालीन आउली एवं राजस्थान रो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज रे अनुष्ठित होउछि। भारत एवं अमेरिका दुई बाहिनी मध्यरे आंतः कार्यदक्षता तथा द्विपाक्षिक प्रतिरक्षा सहभागिता को सशक्त करिबारे एही समराभ्यास एक मंच प्रदान करूछि। एपरिकि विभिन्न आह्वानर मुकाबिला दिगरे दुई बाहिनी पारस्परिक सहयोग माध्यम अधिक सशक्त हो प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि। प्रजुक्ति विद्या आधारित समराभ्यास को प्राथमिकता प्रदान कराउछि। प्रशिक्षण को ड्रोन माध्यम तदारख कराउछि। उभय सेनार बहु विशेषज्ञ एथिरे अंश ग्रहण करिछन्ति। नेपाल बन्यारे मृत्यु संख्या 1,399 को वृद्धि पाई। सुरक्षाकर्मी मिलित कमाण्ड पक्षर् सन्धान और उद्धार कार्य जारी रही। 5,170 अधिक लोक निखोज थिबा आकलन कराई। प्रभावित अंचल एपर्यंत मोट 13,742 जन को उद्धार कराई। जातीय विपर्यय विपद ह्रास परिचालना कर्तृपक्ष सूचना अनुयायी चितवन जिल्लार् सर्वाधिक 364 मृतदेह उद्धार कराई। वायुमंडल में ओजन स्तर संरक्षण संपर्क में जनसचेतनता वृद्धि लक्ष्य नहीं आज विश्व ओजन दिवस पालन कर 1994 मसीहा जातिसंघ महासभा ओजन स्तर सुरक्षा पर ग्रहण कर ऐतिहासिक मंट्रिल मार्गदर्शिका को स्मरण कर प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर 16 तारीख में यह दिवस पालित होई चलित वर्षर प्रसंग रही एक शीतल ग्रह विश्वस्तरीय पदक्षेप। वैज्ञानिक गवेषणा और ओजन स्तर को संरक्षण करने वायु सुरक्षा उपर गुरुत्व प्रदान लक्ष्य नहीं आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करा जाय छी। आधुनिक स्वास्थ्य आवश्यकता को दृष्टि रखी शिक्षा और तालीम कार्यक्रम को समन्वित करने लक्ष्य नहीं दिल्ली अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान पक्ष एक कर्मशाला आयोजित हो स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव एगदे कार्डियो मेटाबोलिक रोग स्वास्थ्य वृत्तिगत शिक्षा को सुदृढ़ करने मुख्य उद्देश्य। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय ए संपर्क में सूचना कर्मशाला हृदरोग क्यासर और डायबिटिस वर्धित स्वास्थ्य आह्वानगुड़िकर समाधानर मार्ग उन्मुक्त करने को एक मंच प्रदान करिछि। भारत अफगानिस्तान टी20 आंतर्जातिक क्रिकेट पुरुष वर्ग सीरीजर गतकालीर द्वितीय मैच रे भारत विजयी होईछि। नुआदिल्लीर अरुण जेटली स्टेडियम ठारे खेला जायतिबाय मैच रे भारत अफगानिस्तान को 7 विकेट रे परास्त करिछि। एतिस सीरीज रे 2-0 रे आगुआ होईछि। टॉस जीति भारत प्रथमे फिल्डिंग करबाकु निष्पत्ति नैथिला। निर्धारित 20 ओवर अफगानिस्तान 8 विकेट विनिमय रे 159 रन संग्रह करिथिला। भारत पक्षर नीतीश कुमार रेड्डी 3 विकेट एवं अर्शदीप सिंह 2 विकेट अख्तियार करते 160 रन विजय लक्ष्य को भारत 14 ओवर और 5 बॉल रे 3 विकेट विनिमय हासिल कर दल पक्ष संजू सामसन 22 बॉल रु 57 रन संग्रह करते अभिषेक शर्मा

0: ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଜର ପ୍ରଭାତ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमरीका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रूपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रूपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
4: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर

0: पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
5: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को

0: दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमरीका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते

0: सबु बैंक रे अलग अलग केवाईसी कागज पत्र गोटिए चाबी हि थांदा कि
1: अच्छी ना बापा सीकेवाईसी आईडी
0: सीकेवाईसी माने
1: बैंक आपण को केवाईसी डिटेल सीकेवाईसी रजिस्ट्री रे अपलोड करि थाए आ आपण को मिलि थाए गोटे अनन्य 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी जहां सबु आर्थिक आदान प्रदान रे वैध होई थाए गोटे जगह रे केवाईसी अपडेट द्वारा बाकी बैंक वित्तीय संस्था रे भी अपडेट होई जाए
0: वाह आरबीआई कहे
1: सुरक्षित बैंकिंग आड़ को प्रथम पदक्षेप
2: एथरो शिल्पी हेले शक्ति मिश्रा।

0: ଶୁଣିଲେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल ₹2,000 से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीक क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहा है। इस दौरान श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैक्काल में भी आज स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 दिन में बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं केरलम के एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और इडुकी जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कुन्नूर जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच भी कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सुनिले हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार कल आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी जयपुर आरंभ करछु हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम। प्रथम गीतटी आमे नेछु साफित चलचित्र रो, शिल्पी श्रेया घोषल, गीतिकार समीर, संगीत निर्देशना चित्तरंजन भट्ट।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियाँ बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियाँ और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू,

शेष साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा, भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है?
प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं. प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन.
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ. उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो. अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए. यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए. इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया. उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की.

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे।

5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माता जी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माता जी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन रामकृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया
0: जी।
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा
0: जी।
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है
0: जी।
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है
0: जी।
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी
0: जी।
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे।

0: इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: प्रश्न करो के सुनिले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी जयपुर।
4: कौन आपण आईटीआई, प्लस टू, डिप्लोमा किंबा बीटेक कंप्लीट करिबा परे निज करियर बूस्ट करिबा को चाहछंती?
5: तेबे स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा द्वारा वर्ल्ड स्किल सेंटर रे 1 ईयर एडवांस स्किल डेवलपमेंट कोर्स रे भाग नियंतु, जेउथिरे आपण को मिलिबा इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग, ग्लोबल एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज ओ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस।
4: बैच 10 सितंबर 26-27 एडमिशन आरंभ होई सारिछि। आवेदनर शेष तारीख 30 सितंबर 2000।
5: अधिक जानिबा पई विजिट करंतु www.worldskillcenter.org किंबा कॉल करंतु 1-800-266-002।
3: प्रचार करछु लोकगीतर कार्यक्रम पाला, विषय अंबारिका, परिवेशन करिवे सुदर्शन महापात्र एवं साथी।
6: श्रीमन सत्यनारायण देशवासी मंगल करंतु बोल आनंदे
7: हरि हरि बोला।
6: जस्याली यत सड़क सिमनि जल धि पृष्ठे जगन मंडल द्रष्टायाम धरणी नखे दिति सुता धीस पदे रोदिसि क्रोधे क्षत्रगण सरे दश मुख पाण प्रलंबा सुर ध्याने विश्रमतांग धार्मिक कुलम कस्मै चिदस्मै नमः। हरिबंधु
8: आज्ञा।
6: जुगे जुगे नारायण यही विश्वनियंता जगदीश्वर भूभार हरण लागी यही मृत्युभूमि अवतार ग्रहण कर अवतारवाद संपर्क करे आमर विभिन्न कवि विभिन्न ग्रंथरे विभिन्न भाषा रे प्रमाण दिछंती।
8: इमितिका
6: प्रथमे देखा जाऊ ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहंती दुष्ट निवारी संथ

पास आगे आगे दौड़ी थी उतरे भाई की सुदर्शन दुर्वासन को रक्षा ना दुर्वासा विकल जीवन रक्षा करने पहुंच गल ब्रह्मा निकट में कहले वेदवर वेदवर मोर प्राण गला मत रक्षा कर देखीदे आसी सुदर्शन चक्र कह सुदर्शन कबल मु तुमको रक्षा करी दुर्वासा असंभव असंभव।

0: बोलो प्रेमानंद कबारे हरि बोलो।
1: लोकगीत क्रम रे प्रचार कलु दासकाठिया गीत परिवेषण कले रामहरि बाढ़ी एवं रवि नारायण शतपथी। श्रोतामाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित होउछि मीडियम वेबरे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जोगे एवं एफएमरे 103.6 मेगाहर्ट्ज जोगे। समय वर्तमान दिन 12:00 आरंभ करुछु हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम। प्रथम गीतटि आमे नेइछु राम लखन चलचित्ररु। द्वैतकण्ठरे गाइछन्ति मनहर एवं अनुराधा पडवाल। गीतकार आनंद बक्सी। संगीतरे सजेइछन्ति लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: प्रचार कल केतोटी भक्ति गीत आकाशवाणी जयपुर समय दिन गोटाए शुणु हिंदी समाचार रिले करुचु आकाशवाणी दिल्ली रु।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक

0: से बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରାହୁଲ ମିଶ୍ରା ଏବଂ ଆଖ୍ୟାଙ୍କା ଶର୍ମା। ମେ ତେରା କୌନ୍ ହୁଁ କୌନ୍ ହୁଁ ମେ ତେରି ତୁସେ ହିଁ ନାତା କ୍ୟୁଁ ଯୋଡ଼ା। ଦ୍ୱୈତକଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ମିଶ୍ରା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଶର୍ମା।

दिल तो बच्चा है जी ए चलचित्र गीतटी शुणवा कंठदान करिसंती महुई चौहान गीतिकार निलेश मिश्र संगीतकार प्रीतम कथचित्र दिल तो बच्चा है जी।

0: तो रिवर माउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब सुनते हैं फिल्म रंगोली का दो गाना, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और तर्ज शंकर जयकिशन की है।

और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज. फिल्म का नाम है बंबई का चोर. गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि हैं.

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: सुनिए
3: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: सुनिए
3: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन।

0: फोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: ಹೇಳಿ. सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, श्रोताओं को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार,
1: और सभी श्रोताओं को, हमारी सखियों को दीपा माहेश्वरी का, चंचल आपको भी,
0: दीपा आपको भी
1: हेल्दी नमस्कार.
0: हाँ जी, हेल्दी नमस्कार. और त्योहार आते हैं ना, तो उस वक्त हम इतने कई बार मसरूफ हो जाते हैं ना कि सेहत की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं, रात को देर से सो रहे होते हैं, और खाने पीने का समय है वो भी अनियमित हो जाता है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी कुछ गड़बड़ा जाती
1: है. बिल्कुल, और खासतौर पर जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि सबको देने में, सबके लिए ध्यान रखने में, और जो घर में मेहमान आते हैं उनका ख्याल रखने में कहीं अपना ख्याल पीछे छूट जाता है.
0: बिल्कुल, सबसे पहले जो आगंतुक है, मेहमान है
1: जी,
0: हमारे अतिथि हैं, उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको पहले परोसा जाए, और सबका करते करते इतनी देर हो जाती है कि जो दोपहर के भोजन का समय होता है एक से दो के बीच का, तीन बज जाते हैं, चार भी बज जाते हैं.
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होता है. और आज तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे कार्यक्रम.
0: बिल्कुल बिल्कुल, त्योहार की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारी विरासत है, धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम निभा रहे हैं
1: जी.
0: और यही अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे पाएंगे.
1: बात तो बिल्कुल सही है, और बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर के हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है, इसीलिए बात होगी. पहला विषय जो है हमने चुना है आज के लिए कि त्यौहार हमारी धरोहर, हमारी परंपरा, इस पे आप क्या सोचते हैं और आप कितना इसको आगे बढ़ाने में इसकी कोशिश जारी रख रहे हैं.
0: बिल्कुल, अगर कोई चीज को आगे बढ़ाना है हमारी धरोहर को, तो आदान प्रदान बहुत जरूरी है ना.
1: अरे बिल्कुल,
0: क्योंकि जब तक हम चीज कोई किसी को देंगे नहीं, वो उसको ग्रहण कैसे करेगा, और वो ग्रहण करेगा तभी तो आगे पहुंचाएगा. यही तो होता है आदान प्रदान.
1: बिल्कुल सही कहा. और देखो ना भाई, आदान प्रदान अच्छी चीजों का हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप पर्यावरण में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ लगातार अगर निकालते चले जा रहे हैं, तो फिर देखिए ओजोन परत के संरक्षण में गंभीर विषय अब बन चुका है वो, और उसमें कई सारी तकलीफें आ रही हैं. और यही बातों को समझने के लिए आज हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं.
0: बिल्कुल, इस पर भी विस्तार से बात होगी, और हमारे सुनने वाले शायद इस बात को समझ रहे हैं कि हम सीधे सीधे विषय नहीं बता रहे हैं, लेकिन बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि हम किन चीजों के बारे में, किन विषयों को लेकर आज बात करने वाले हैं.
1: अरे भाई इतना देखिए, गंभीर ना हो जाइएगा, आज व्यंजन भी है, क्योंकि मोदक के कई सारे प्रकार चंचल हमें बनाने हैं, और बहुत सारे संदेश आए हैं, और बड़े मजेदार कुछ रेसिपीज भी हमारी सखियों ने लिख भेजी.
0: तो तुमने ओजोन दिवस की जब बात की, मुझे याद आया कि और भी दो महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं. एक तो है हृदय में हस्तक्षेप द्वारा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर्स इसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस.

0: कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित किया गया था और इसी दिन 16 सितंबर यानी 2077 को डॉक्टर एंड्रियास गुडिजिक ने पहली बार एक सफल एंजियोप्लास्टी की थी और इसीलिए दिल की जो बीमारियां हैं जो सर्जरी है उसके बारे में जागरूकता हो इसलिए दिवस हम मना रहे हैं।
1: बिल्कुल, और ये दिवस के साथ याद आया चंचल एक और मुख्य दिवस है, आज है दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सितंबर 2023 में इस दिन के आयोजन का फैसला हुआ था और 9 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित करके 16 सितंबर को ये आधिकारिक दिवस घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के विकासशील देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करना, ताकि गरीबी, असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और ये देश पीछे कहीं ना रह जाए।
0: बिल्कुल, जलवायु की बात होती है तो ओजोन की बात भी होती है, हम विस्तार से इन सब को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले गीत सुन लें।
1: गीत भी सुनेंगे भाई, साड़ियों का जो लगाव है उससे कैसे हम पीछे सूट।
0: अरे हाँ भाई, विषय बताते बताते हम ये तो भूल ही गए कि आज साड़ियों की बात भी होनी है, तो आज कौन सी खास साड़ी की बात होगी?
1: आज हम करेंगे मोठड़ा साड़ी, आप बताइएगा कौन से प्रदेश से आती है ये साड़ी।
0: जी,

0: यशुदास की आवाज में बहुत खूबसूरत ही गीत हम सुन रहे थे, और गीत से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस की भी हमने बात की। इन्हीं में से एक है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ओजोन दिवस भी कहते हैं इसे।
1: बिल्कुल,
0: सूरज की प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है ये हमारे जीवन को संभव बनाता है, लेकिन जो ओजोन परत है वो जीवन के रूप में से संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं। और ओजोन परत गैस की एक बहुत नाजुक ढाल की तरह होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इस तरह से ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में भी बहुत मदद करती है।
1: बिल्कुल, और अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा होती।
0: हाँ,
1: ये समताप मंडलीय परत एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूर्य की ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चंचल, ओजोन परत यूवीबी जो नाम की यूवी प्रकाश के जो हिस्से हैं उसे अवशोषित कर लेती है।
0: बिल्कुल, आम बोलचाल की भाषा में अल्ट्रा वायलेट रेज जानते हैं
1: जी।
0: तो वो सीधे हम तक ना पहुंचे, इसीलिए बहुत झिल्ली जैसी एक लेयर होती है।
1: हाँ, तो ये कई तरह से कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव हम पर डालती है, और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन।
0: हाँ, सही कहा।
1: और इस दिवस का आयोजन करने के कारण भी ये खास है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान खींचना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ओजोन परत जो है जो हमारी सुरक्षा कर रही है उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इस बारे में ध्यान खींचा जा रहा है। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इसे खतरनाक गैसों से बचाना है। सबसे ज्यादा खतरनाक गैसों में कुछ है CFC जिसे क्लोरोफ्लोराइड कार्बन के नाम से हम जानते हैं, हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला कि मानवता इस सुरक्षा कवच में छेद कर रही है, यानी कि हम ही लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने इसके प्रति चिंता जताई कि इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और हम जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनसे जो गैस निकलती है ना, ये वही गैसें हैं जो इस परत को नुकसान पहुंचाती है।
1: बिल्कुल, और जो हमारे जो निजी साधन है परिवहन के, उनका अधिक उपयोग करने से भी बचना है, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल, जो बहुत ही अच्छे ये समाधान है। इससे पहले हम घर में भी काम कर सकते हैं।
0: हाँ,
1: वो कैसे कि भाई अगर आप हर कमरे में एयर कंडीशन चलाकर हर परिवार का एक एक सदस्य अलग अलग कमरे में बैठेगा और हर रूम का अलग अलग AC चलाएगा, तो बताइए कि कितना हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो गैस कितनी ज्यादा हवा में फैल रही है, इसके अलावा आपका भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी होता है, तो दोनों ही नुकसान को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और साथ में बहुत जरूरी है कि आप AC को एक या तो कमरे में चला लीजिए, फिर भी ना संभव है तो कुछ इस तरह से कीजिए कि सारे लोग एक वक्त तो एक ही जगह पर बैठे। उसके साथ में बहुत जरूरी है कि आप खिड़की दरवाजे थोड़ी सी देर खुले रखिए, स्वच्छ और शुद्ध हवा का आवागमन भी घर के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में ओजोन परत के बचाव को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सके, इसे संरक्षित करने के संभावित उपाय खोजे जा सके। इसे देश दुनिया ओजोन परत पर बातचीत करती है और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं ताकि इसकी सुरक्षा हो सके।
1: बिल्कुल, और चंचल ये दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना हमें आज से ही जारी रखना होगा।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हमारे लिए हवा पानी जरूरी है, सूरज की किरणें भी जरूरी हैं, तो सूरज खुद जलकर हम तक ये रोशनी, प्रकाश और बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचाता है, वो जलता रहे लेकिन उसे कोई नुकसान ना पहुंचे।

0: तो भाई सूरज की सुरक्षा के लिए, यानी कि हम सब सूरज की जब रोशनी हमें मिलती है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हम तक ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत की सुरक्षा बहुत जरूरी,
1: है और हमारे पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी।
0: हमारे श्रोता भी इसी बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण परत है और शेकारी पदार्थों का उपयोग कम करना जरूरी है, पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, ओजोन परत की रक्षा हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की रक्षा करना है। ये लगभग सभी हमारे श्रोताओं लिखे
1: हैं, बिल्कुल इसी तरह के आए हैं। और देखिए ना, जब ये सारी बातें होती जागरूकता की, तो एक चीज की और जागरूकता आ जाती है कि जब त्योहार आ रहे हैं तो मन कैसे एकदम जागा जागा सा रहता है, बिल्कुल है ना, खुश खुश रहता है और घर में सारा चहल पहल लगी रहती है। सुबह जल्दी उठना है कोई परिवार का सदस्य, क्योंकि कुछ तैयारी करके देर से सोया है, तो कुछ परिवार के सदस्य जल्दी उठ करके उसकी तैयारी कर रहे होते हैं।
0: ये देखिए ना, ये जो सावन का महीना आता है ना
1: जी,
0: इसमें तीज, फिर रक्षाबंधन, फिर खत्म होते होते फिर ये जो आते हैं गणेश चतुर्थी, और महाराष्ट्र में तो चलिए बहुत धूमधाम से मनाया ही जाता है, अब तो देश के हर हिस्से में
1: बिल्कुल
0: बहुत धूमधाम से मनने लगा
1: जी।
0: इसके खत्म होते होते कुछ दिन बाद ही फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर दिवाली की शुरुआत हो जाएगी, और यूं जो सिलसिला है ना अभी रुकने नहीं वाला है।
1: बिल्कुल, वो इसलिए रुकने नहीं वाला है चंचल, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं, और जीवन में त्योहार ये सिर्फ कैलेंडर पे आने वाली तारीखें नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से जुड़े खूबसूरत अवसर होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और हमारे देश में अगर त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं।
0: हाँ,
1: अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक भावना दिखाई देती है, खुशियां बांटना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना।
0: देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार तो होते ही हैं दीपा, लेकिन एक ही त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: कहीं खानपान का थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं पहनावे का, तो कुछ कुछ रीति रिवाजों का बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि वो चीजें होती मिलती जुलती ही हैं, जो उनका मतलब है, अर्थ है, वो एक ही होता है।

0: जी। अब दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपर्व, पोंगल, गणेश उत्सव, नवरात्र, हर त्योहार का जो है अपना एक अलग रंग होता है, स्वाद होता है और एक संदेश लेकर भी वो आता है।
1: बिल्कुल,
0: त्योहारों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो अपने जड़ों से जुड़ती हैं, रीति रिवाजों को जानती हैं और जो हमारे पूर्वज हैं वो बड़े प्यार से इन चीजों को संजो कर रखते हैं।
1: और त्योहारों की सबसे सुंदर बात चंचल ये लगती है कि इसमें परंपरा के साथ अपनापन जुड़ा होता है। और त्योहार आते ही देखो ना, घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, फिर घर भी सजता है, रिश्तेदारों को और मित्रों को हम जो मिलने मिलाने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है, कहीं पर हम आमंत्रण दे रहे हैं, कहीं पर हम आमंत्रित हैं, इस तरह की बातें भी होती है। और कई बार तो त्योहारों का इंतजार इसलिए भी होता है कि इसी बहाने परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर वो पुरानी यादों को फिर से जिया जाएगा।
0: बिल्कुल, जब हम दिवाली मना रहे हैं तो पिछली दिवाली पर क्या हुआ था ये याद करते हैं, इस साल जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं तो याद करते हैं कि पिछले साल मूर्ति कैसी थी, कौन कौन मेहमान आए थे, किस तरह से धमाल मस्ती हुई, क्या पकवान घर में बनाए गए थे। ये पिछली जो बातें होती है ना वो यादों की एक फहरिस्त तैयार होती जाती है।
1: बिल्कुल, और परंपराएं केवल पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं होती है, इनसे पीछे जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी छिपी होती है चंचल। जैसे दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश का विजय का संदेश देती है, होली आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने की सीख देती है, फिर देखिए ना ईद हमें भाईचारे और साझेदारी का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम और करुणा की भावना हमें जगाता है हमारे अंदर। यानी हमारे त्योहार हमें हर साल याद दिलाते हैं मानवता, प्रेम और सद्भाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: और हमारे एक संदेश में हमें बताया गया है कि त्योहार हमारी धरोहर और हमारी परंपराएं हैं। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि पूरे साल हम विभिन्न त्योहार उत्साहपूर्वक मनाते हैं जो हमारी धरोहर है और हम परंपरा के अनुसार इन्हें मनाते हैं। जैसे इस समय हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, हमने घर में पूजा के कमरे में मिट्टी से बने हुए गणेश जी की स्थापना की है। 11 दिनों तक सुबह और शाम घर के सभी सदस्य आरती में उपस्थित रहते हैं। एक बेटी है जो कि बाहर जॉब करती है, बाहर उसकी पोस्टिंग है, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल के माध्यम से इस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है। और यही हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है। कई सालों से इस परंपरा को हमारे घर के सभी बड़े निभा रहे हैं, इसे हमने भी कायम रखा है। यही तो बात हम भी कह रहे हैं ना कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूंजी के रूप में इन चीजों को सौंप कर जाने वाले हैं।
1: और एक हमारे जो हमारी सखी है उन्होंने कुछ अलग अंदाज में लिखा है, वो कहती है, आए त्योहार खुशी की बाहर, दीप जले सजे घर के द्वार, रंग बिरंगे उमंगों का मेला, रहना जाए कोई अकेला, मिलकर गाए खुशियां मनाए, प्यार का संदेश हम सब पहुंचाएं।
0: तो बस हर दुख छोड़कर, हर चीज को भुलाकर हम भी खुशियों की रंगीलियां मनाएं।
1: चलिए।

0: भाई चंचल देखिए, गम छोड़ना तो चाहिए, बिल्कुल त्योहारों में मिलने का जो असली अर्थ तो वही है। साथ में हम ये परंपराएं क्यों मनाते हैं, क्यों ये हमारी धरोहर है, अपनी आने वाली पीढ़ी यारे हमारे बच्चों को जरूर इस बारे में बताना चाहिए क्यों विशेष व्यंजन बनते हैं, जैसे कि प्रकृति के अनुरूप जो जो उस वक्त उपलब्ध होते हैं, चाहे आप धान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए, फल सब्जियां जो भी उपलब्ध होती हैं उस वक्त प्रकृति के हिसाब से जो भी वो पैदावार होती है, उनसे जुड़ी हुई व्यंजन जब बनते हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे क्यों ये बनाया जाता है, इस पे विचार विमर्श हो, उस पे डिस्कशन घर में बैठ के कीजिए, आप देखिए इतना आनंद आएगा और बच्चों में जो ज्ञान वर्धन होगा उसके बाद वो वाकई में हमारी परंपराओं और हमारे इन धरोहरों की जो असली महत्वपूर्ण इसकी महत्ता है उसको समझेंगे।
1: बिल्कुल, बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि भाई आप गणपति जी को भोग लगाते हैं तो चावल के आटे वाला ही मोदक क्यों लगाते हैं, अन्नकूट पर पूजा करते हैं तो क्यों उस समय ये वाली ही सब्जियां बनती थी।
0: जी,
1: बहुत सारे, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो त्योहार है वो भी कृषि प्रधान बहुत सारे होते हैं, बैसाखी है, अन्नकूट है, पोला है, ऐसे न जाने कितने त्योहार हैं जो कृषि पर ही निर्धारित होते हैं। जब नई फसल आती है ये अक्टूबर के महीने में
0: जी,
1: तब जो भी फल सब्जियां या धान उगाए जाते हैं उन सबका भोग लगाया जाता है अन्नकूट में
0: जी।
1: इसी तरह से बैसाखी में सरसों की खेती होती है, सरसों काटी जाती है, गेहूं कटता है और जो भी अनाज कटते हैं तो उनकी उनकी वो खुशियां मनाई जाती
0: हैं। बिल्कुल, और उन्हीं से ही जुड़ी हुई चीजें बनती हैं घर में,
1: है ना। इसी तरह से संक्रांति आती है तो क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है तो तिल का विशेष रूप से
0: ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल, और आखिर त्योहार की ऐसी खुशी तभी है ना चंचल जब हमारे चेहरों के साथ साथ किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान आए, तो त्योहार की खुशियां उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: इसी तरह से एक संदेश में हमारे श्रोताओं का कहना है कि त्योहार पहले भी हमारी धरोहर थे और आज भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, एक बड़ा परिवार होता था, सब साथ मिलकर खुशियां मनाते थे, त्योहार मनाते थे, खूब आनंद आता था। आज क्योंकि एकाकी परिवार हो गए हैं और अलग अलग हो गए हैं सब, लेकिन छोटे परिवार हो गए हैं, त्योहार हम आज ही मनाते हैं। तो ये बात सही है, महानगरों में जगह की कमी के चलते एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब कोई त्योहार होता है तो भले हम चार दिन एक साथ ना बैठे लेकिन उस दिन जब त्योहार मनाया जा रहा है तो घर पर पूरी चहल पहल होती है, वो जो छोटा सा भी घर हो ना तो पूरा मेहमानों से भरा पूरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है, ये कहते हैं कि वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप और पवित्रता बनी रहे।
1: इन बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है।
0: जी।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। मेरे को
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम हम फिर से लेकर आ गए हैं अंतराल के बाद, है ना?
3: जी बिल्कुल। चंचल, सृष्टि की रचना जब हुई, ऐसे हमारे एक सखी ने लिख भेजा है कि तब से मनुष्यों ने खास अवसरों पर मिलजुल कर जो कार्यक्रम संपन्न किए वे कालांतर में त्योहारों का उन्होंने रूप ले लिया, और आने वाली पीढ़ियों ने नित नए प्रयोग कर उसमें कुछ जोड़ भी दिया, और अब ये कहती है कि उसी लोग उन्हें उसी बातों को ही आधार मानकर एक निश्चित दिन पर ऐसे आयोजनों की परंपरा करते चले आ रहे हैं, और हम आज भी पूर्वजों की जो राह है उस पर चलते हुए उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए हम नियत तिथि पर होली दिवाली रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाते चलते आ रहे हैं।
2: और भाई जिस तरह से एक नियमित क्रम चलता रहता है त्योहारों का, हमारे कार्यक्रम में भी हमारी बातें कुछ जानकारियां और गानों का एक क्रम चलता रहता है, तो गाना सुन ले।
3: चलिए सुनते हैं।
4: ये तो कहो

0: तो भाई जब हम घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे नहीं पूछते कि वो कौन है, क्योंकि हम सबको जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ अजनबी चेहरे भी आते हैं और वो भी हमारे चिर परिचित बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और त्योहारों के बीच में जब अगर एक सुंदर सी साड़ी पहनने को मिल जाए ना घर की महिलाओं को, घर की एक महिला को, जो उसके जो चेहरे की मुस्कान जो होती है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है। और ऐसे में अगर मोठड़ा साड़ी मिल जाए राजस्थान के प्रसिद्ध, तो फिर तो बात ही क्या है।
0: बिल्कुल, और राजस्थान की बहुत कहते हैं ना कि डिमांड वाली साड़ियों में से ये एक है, और लहरिया का ही एक वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा लहरिया होता है ना उससे मिलता जुलता ही ये होता है। लहरिया में बस सीधी सीधी लहरें होती हैं, लेकिन जो मोठड़ा साड़ी है उसमें जो लहरें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हुई थोड़ी सी आड़ी तिरछी, और फिर वो चौकोर बन जाती हैं। आड़ी तिरछी जब काटती हैं और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दो लहरिया साड़ी एक के ऊपर एक चढ़ा दी गई हो, और इसी की वजह से इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा भरा भरा और आकर्षक लगता है।
1: बिल्कुल, कुछ और खास बातें हैं चंचल इस मोठड़ा साड़ी की, जैसे लहरिया से थोड़ी अलग बनाती है इसको। लहरिया में एक साथ दो रंग होते हैं, पर मोठड़ा में जहां दो रंग मिलते हैं वहां तीसरा रंग अपने आप बन जाता है। जैसे लाल और पीला मोठड़े के बीच में नारंगी आपको दिखेगा, और यही इसका असली आकर्षण भी है।
0: बिल्कुल, और मोठ राजस्थानी में किसी दाने या गांठ को कहा जाता है, और क्योंकि ये जो साड़ी होती है इसे बांधने के समय गांठें लगाई जाती हैं, और मोटी मोटी गांठें लगाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मोठड़ा साड़ी पड़ गया। और ये साड़ी बंधेज की तकनीक से ही बनाई जाती है। इसमें कपड़े को दो बार अलग अलग दिशा में बांधकर रंगा जाता है, पहले एक रंग में रंगकर सुखाया जाता है और फिर दूसरी दिशा में बांधकर दूसरे रंगों में इसको रंगा जाता है।
1: बिल्कुल, और पहले की साड़ियां सूती कपड़ा माने कि कॉटन में बना करती थी, लेकिन आजकल अब तो शिफॉन में भी बनने लगी है, जॉर्जेट में भी बनने लगी है ये वाली साड़ियां। और क्योंकि शिफॉन बहुत हल्की होती है और आप चाहें तो रोजमर्रा में भी इसको पहन सकते हैं, इस वजह से ही इसकी मांग भी बहुत ज्यादा होने लगी है बाजार में।
0: हाँ, लहरिया और मोठड़ा जो है ना ये ज्यादातर इसी मौसम में पहना जाता है, और ये होते हैं थोड़ी चिपचिपी गर्मी वाले दिन
1: जी।
0: तो क्या होता है कि जो ऐसी हल्की फुल्की साड़ियां हो जो हमें तकलीफ ना दें, हमें बहुत आराम महसूस कराए, इसीलिए सूती जॉर्जेट शिफॉन ऐसे कपड़े में इन साड़ियों की डिमांड जो है वो ज्यादा
1: होने लग जाती है। और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रंग भी इसमें है, जैसे कि पिंक रानी जो गुलाबी
0: कलर होता गहरा वाला होता ना, रानी महारानी की पिंक जिसे कहते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ में लाल पीला हरे रंग का एक अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करती है महिलाएं। तो ये गोटा पट्टी वाला मोठड़ा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन पर जो सोगी की रस्म में गोटा वर्क वाला मोठड़ा उपहार में भी दिया जाता है।
0: और राजस्थान में मोठड़ा को सुहाग और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दीपा, नई दुल्हन जब पीहर से आती है तो उसका जो पहला सावन का तोहफा आता है उसमें मोठड़ा साड़ी भी कई बार रखी जाती है, और कुछ कुछ जगह पर इसका जरूरी भी माना जाता है। सावन, तीज, रक्षाबंधन में तो पहनते ही है, इसके अलावा शादियां में भी बहुत पहनी जाती है मोठड़ा साड़ी। और राजस्थान में मान्यता ऐसी है कि सावन में लहरिया मोठड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है।
1: बिल्कुल, और एक संदेश आया है, ये कहती है कि ये पारंपरिक हस्तकला है राजस्थान की, इसमें कपड़े को एक दिशा में मोड़ने के बाद दूसरी दिशा में भी लहरिया लाइन काटी जाती है। साथ में इन्होंने भी यही कहा है कि शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, कोटा, डोरिया जैसे हल्के मुलायम कपड़ों में पहना जाता है। इसमें गोटा पट्टी, जरी, आरी, तिरी वर्क और खूबसूरत बॉर्डर का भी काम किया जाता है, जिससे पहनने पर ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है।
0: अभी महिलाओं को कई बार लगता है ना कि हमारे वार्डरोब में साड़ी नहीं है तो ले ली जाए, कई बार हमारा बजट भी हमें लगता है कि रोक देता है, तो ये साड़ी जो है क्योंकि हल्की फुल्की भी आती है और वर्क वाली भी आती है, तो 300-400 रुपए से

होकर 4-5 हजार तक आप जैसी कीमत में लेना चाहें वैसी साड़ी आप ले सकती हैं इसमें, और प्लेन गोटा वर्क वाली और इन्हीं के अनुसार इनकी जो कीमत है वो अलग अलग मिल सकती है बाजार में। जब भी मोटर साड़ी लेनी हो तो थोड़ी सी पहचान जो है इसकी वो कर ले, और पहचान करने के लिए क्या करना है कि असली मोटरा जो है वो हाथ से बनाया जाता है, उसके जो रंग की किनारी है वो थोड़ी सी अनियमित मिलेगी आपको, और पीछे की तरफ जो है रंग थोड़ा थोड़ा हल्का दिखेगा। मशीन प्रिंट वाली जो साड़ी होती है उसके पीछे सफेद रंग रहता है, तो थोड़ी सी पहचान करके आप साड़ी लीजिए और बस उत्सवों पर, त्योहारों पर और किसी भी खास मौके पर पहन लीजिए।

0: चंचल, देखिए त्योहार आए हैं, घर में बहुत साज सज्जा भी कर ली है, बहुत सारी चीजें भी बन गई हैं। कुछ आदान प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे तोहफों का?
1: तोहफों का भी होता है, और कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं हमारे पास पड़ोस में वहाँ भी वही उत्सव मनाया जा रहा है, तो कई बार जो बहुत सारे पकवान घर में बनते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का भी आदान प्रदान होता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी कढ़ाई मेरे घर में नहीं है, बहुत बड़ा भगोना मेरे घर में नहीं है, कितनी सामग्री बनाई जा सके, तो वो भी हम पड़ोस के घर से ले लेते हैं कई बार। और बहुत सारी चीजें सजावट की भी कई बार आदान प्रदान होती हैं, और जो घर में मेहमान होते हैं उनके साथ में आपसी प्रेम भावनाएं, इनका आदान प्रदान
0: होता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आदान प्रदान ये विनिमय प्रथा का एक प्रकार है, जिसमें लेन देन या अदल बदल की एक प्रक्रिया है, जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं के अलावा अपने अपने विचारों का भी आदान प्रदान किया जाता है। अब वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सखी सहेली इस फेसबुक पेज पर हमारे

0: लिखी कमेंट उद्घोषिकाएं हमारी पढ़ती हैं यानी सहेलियां पढ़ती हैं, तो इस प्रक्रिया में भी विचारों का वर्चुअल आदान प्रदान होता है।
1: क्या
0: बिल्कुल
1: है?
0: सही कहा आपने भाई, आप अगर संदेश नहीं लिखेंगे हाँ। तो फिर ये कार्यक्रम की खूबसूरती कैसे बनेगी और ये आदान प्रदान कैसे पूर्ण होगा।
1: और ये बहुत जरूरी आदान प्रदान है। और इसी को लेकर एक और संदेश है, इसमें लिखा गया है कि रिश्ते एक सुंदर आदान प्रदान है जहां कोई अपना समय देता है, कोई विश्वास, कोई प्रेम बांटता है, कोई मौन में भी साथ निभाता है। इन छोटे छोटे हिस्सों में जीवन की बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं।
0: बिल्कुल। एक संदेश और आया है, वो कहते हैं कि पहले आदान प्रदान पड़ोसी में चीजों का होता था, चीजों के बीच भावनाओं और विचारों का भी हो जाता था, मन की बातों का आदान प्रदान होता है। ये रिश्ते कभी कभी इतने अंतरिम हो जाते हैं कि अपनी राज की बातें भी हम पास पड़ोसियों से कर लेते हैं। शायद इसी आदान प्रदान से रिश्तों में अपनापन आता है। पर अगर कभी मतभेद हो जाए तो यही राजदार अपनी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आदान प्रदान तो करें, साथ में उन्होंने एक सावधानी दी है कि थोड़ा संभल कर करें, ये हमारा अनुभव है।
1: एक अन्य संदेश में एक बात कही गई है, आदान प्रदान हमारी आवश्यकता भी है, कर्तव्य भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं जहां हमें तमाम जरूरतों के लिए एक दूसरे से लेना भी पड़ता है और उनकी जरूरत होने पर उन्हें देना भी पड़ता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजें अपनी सामर्थ्य से हम खरीद लाते हैं या उत्पादित भी कर लेते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें अक्सर सबसे ज्यादा आदान प्रदान में लेना देना पड़ता है। जैसा कि हम सब एक शादी में तमाम पैसे खर्च करने के लिए एक दूसरे लोगों से मदद ले लेते हैं, बाद में उन्हें वो पैसा लौटा भी देते हैं, इसी तरह से उनकी डिमांड पर कई बार उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और वो आदमी भी हमें बाद में भुगतान कर देता है। तो बिल्कुल इस तरह का जब आदान प्रदान होता है तो रिश्तों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए और हमारे कार्यक्रम का जो तालमेल है वो ना बिगड़ जाए, इसलिए गाना सुन लेते हैं।
0: चलिए सुनते हैं।

0: भाई हमने बहुत सारे त्योहारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आदान प्रदान की बात भी कर ली, जो त्योहार हमारे धरोहर है परंपरा इनकी बात भी कर ली, हम क्या पहनेंगे मोढ़ा साड़ी उसकी बात भी कर ली, लेकिन अभी तक खाने पीने की कोई बात नहीं हुई।
1: अरे भाई हो रही है ना, देखिए मोदक बनेंगे, बहुत प्रकार के मोदक होते हैं, तो जिसमें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि उकड़ीचे मोदक होते हैं जो कि भाप में पके हुए सबसे प्रसिद्ध

0: आटा और पारंपरिक मोदक है।
1: और ये उखड़ी के मोदक यानी कि चावल के आटे के मोदक होते हैं जो खास तौर पर महाराष्ट्र में इन्हीं मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा
0: जी। ये बता रही हैं कि चावल के आटे के आवरण और ताजे नारियल गुड़ की भराई वाले ये मोदक भाप में पकाए जाते हैं। उसके अलावा तले हुए मोदक भी होते हैं। इन्हें गेहूं के आटे या मैदे से बनाकर तेल या घी में आप तल के बना सकते हैं। फिर मावा यानी कि जिसे खोया बोलते हैं वो मोदक भी होते हैं, तो इसमें चीनी और मेवों को झटपट तैयार किए जाने वाले ये मोदक होते हैं। मतलब अंदर जो फीलिंग है वो मावे के साथ चीनी और सूखे

0: चॉकलेट के स्वाद वाले आधुनिक और इंस्टेंट मोदक बनाए जाते हैं। साथ में हमारी सखी बता रही है कि ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं, जिसमें अंदर जो भरावण है वो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, बादाम, पिस्ता, इन सब का भी आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रकार बता दिए।
1: इसी तरह से प्रकार ही बताने के लिए एक और संदेश आया है, और इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं। सभी के घर में मोदक का स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है, बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए मोदक अलग अलग तरह के स्वाद में नजर आते हैं। चावल के आटे के आवरण वाले, नारियल की गुड़ की भरावन वाले मोदक होते हैं। तले हुए मोदक में मैदे, गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और भरावन नारियल या ड्राई फ्रूट्स की जाती है और ये घी में तले जाते हैं। मावा मोदक भी बनते हैं जिनमें मावा, चीनी और मेवे से के मिश्रण से इन्हें बनाया जाता है। चॉकलेट मोदक में, चॉकलेट मोदक जो है बच्चों के बड़े लोकप्रिय होते हैं, जो चॉकलेट और मावा से बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट के मोदक में काजू, पिस्ता, बादाम, इस तरह की चीजों से इनको बनाया जाता है। तिल और गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं और तिल गुड़ से पारंपरिक स्वाद वाले मोदक बन जाते हैं। खोया पनीर या दूध वाले मोदक भी होते हैं जो दूध से बनी सामग्री से तैयार किए जाते हैं।
0: जी, हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोदक के कई प्रकार होते हैं पर हम कैसे बनाते हैं वो बता रही हैं कि हम मावा में सभी प्रकार के सूखे मेवे डालकर और चीनी मिलाकर घी में तलकर बनाते हैं। अगर चीनी मावा में न डालें तो उसकी चाशनी बनाकर मोदक को घी में तलकर इसे चाशनी में डाल देते हैं और मोदक को चाशनी में लपेट देते हैं, तो वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं इनके घर में, इस तरह से हमारी सखी ने लिखा है। और साथ में बता रही हैं कि बच्चों और युवाओं के बीच में ये चॉकलेट मोदक है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें चॉकलेट और बिस्किट का या फिर नट्स, जो आप सूखे मेवे हैं, उसका मिश्रण भरकर मोदक का आकार दे सकते हैं। फिर एक मोदक का प्रकार बताया है, रसवंती या रसमलाई मोदक। इसमें ताजे पनीर, मिल्क पाउडर, चीनी और केसर पिस्ता के मिश्रण से बनने वाला है ये मोदक। बहुत नरम और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा मावा और पनीर मोदक भी बनता है, जिसमें मावा और यानी खोया, चीनी, इलायची पाउडर मिलाकर आसानी से जो मोदक का मोल्ड होता है ना, उससे उसकी मदद से बन जाता है। फिर एक और है जिसमें कि बेसन सूजी वाला, जैसे कि हमारी एक और सखी ने लिखा था कि बेसन और बारीक सूजी को घी में भूनकर और चाशनी या बोरा मिलाकर सांचे में आप इसे तैयार कर सकते हैं।
1: तो चलिए, ये तो हुई बहुत सारे मोदक की बात, अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: चलिए,

0: आज के मेहमान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो साहित्यकार हैं, कथक की नृत्यांगना और कथक पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और वायुसेना से भी उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहा है और यायावरी उनकी विशेषता है, वो है जानी मानी साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्ते ममता, बहुत आभार आपका।
0: मनीषा जी, चलिए आपको हम बचपन के गलियारों में ले चलते हैं जहां से आपने रेडियो में कदम रखा था और मेरे ख्याल से राजस्थान आकाशवाणी, तो किस जगह पर आपने पहली बार अपनी आवाज रेडियो पर सुनी दी और कैजुअल अनाउंसर के रूप में थी?
1: बिल्कुल बिल्कुल ममता, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और अगर मैं बचपन में कहूँ तो बच्चों के कार्यक्रम आते थे तो हम स्कूल की तरफ से आकाशवाणी में जाते ही थे। और उदयपुर की बात है, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी तब कैजुअल अनाउंसर्स के लिए एक विज्ञापन निकला था और हमारा कॉलेज और हॉस्टल और आकाशवाणी एकदम पास पास ही थे तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने ऑडिशन दिया और हो गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई एमफिल नहीं कर लिया तब तक मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही। आकाशवाणी उदयपुर की बात है ये
0: जी। तो लेखन में कैसे आपने कदम रखा?
1: मजेदार बात बताऊं तो आकाशवाणी ही वो एक योजक रहा मेरे और साहित्य के बीच में। हुआ ये कि क्योंकि मैंने बीएससी किया था और आकाशवाणी में आने के लिए और वहां पे अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको अच्छी हिंदी की जरूरत होती है और अच्छी किताबें, वहां की लाइब्रेरी बहुत रिच थी तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी आके मुझे लगा कि मुझे हिंदी में एमए करना चाहिए और मुझे अपनी हिंदी पे काम करना चाहिए।
0: क्या बात।
1: तो मैंने बीएससी के बाद सीधे हिंदी में एमए किया और साहित्य से जुड़ाव मेरा वहीं से शुरू हुआ और एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: तो पहली बार आपने कविता लिखी या कहानी लिखी?
1: पहली मैंने कविताएं लिखी। कविताएं तो मैंने बचपन से लिखी, जब मैं किशोरावस्था में थी तब माँ कहती थी कुछ लिखो, क्योंकि मेरी माँ को भी साहित्य में बहुत रुचि थी और वो कविताएं लिखती थी तो मैं माँ की डायरी देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कविताएं लिखूं। तो मैंने किशोरावस्था में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम में जो मछली है उसको और एक किशोरी लड़की की जो मानसिकता है उसको कंपेयर करते हुए बचपन में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम।
0: जी जी
1: हाँ, बस ये कि मेरा मन इस एक्वेरियम में मचलती हुई मछली जैसा है, उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी और तब मैं 12 साल की थी। तो मैंने कविताएं पहले लिखना शुरू किया लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कविताओं में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती अपने आप को अभिव्यक्त करने की तो मैं कहानी की तरफ आई।
0: जी, तो पहली कहानी छपने की बड़ी लोगों को खुशी होती है और इंतजार भी होता है, तो पहली कहानी छपने का वो इंतजार और वो खुशी साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के।
1: बिल्कुल ममता, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी और मैं भेजा करती थी, साक्षात्कार एक पत्रिका होती थी, भैरव जी उसके संपादक थे, हंस में मैं बहुत सारी कहानियां भेजती थी और तुम हैरत में पड़ जाओगी कि तब संपादक बड़े कड़क होते थे और मेरी बहुत सारी कहानियां वापस आ जाती थी और उस निराशा को मेरे जो सहयात्री हैं अंशु वो देखते थे तो कई बार वो जो खेत सहित पत्र आता था ना उसको ऑफिस में ही फाड़ देते थे, बताते थे कि कहानी लौट आई है। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसको स्वीकार किया, मतलब 5-6 कहानियों के खेत सहित वापस आने के बाद एक कहानी प्रेत कामना राजेंद्र यादव जी ने स्वीकार की और जब वो छपी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और सच पूछो तो मैं साहित्य की दुनिया में बस एक कहानी के लिए आई थी।
0: क्या
1: वो अलग बात है कि साहित्य की दुनिया ने मुझे रोक लिया क्योंकि वो कहानी छपी उसके बाद मेरे पास फोन आया कि अगली कहानी कब। तो मुझे लगता है कि

0: आपकी जो नियति होती है वो निश्चित कर लेती है कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि मैंने तो कथक भी चुना था अपने लिए, मैंने उसके अलावा बहुत सारी रेडियो में भी जाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि वायुसेना अधिकारी की पत्नी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि हर 3 साल बाद सामान बांधो और चल पड़ो
1: जी।
0: तो मुझे लगा कि लिखना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहानी लिखी और वो छपी।
1: आपने जिक्र किया अंशु जी का, जो आपके पति हैं, और वायुसेना का जिक्र किया कि वायुसेना अधिकारी, तो वायुसेना में पति होना बहुत ही कड़क मिजाज होता है और माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कैसे आपने साधा, अपने जीवन को कैसे जोड़ा?
0: मैं सच बताऊं ना तो मैं जितने सैन्य अधिकारियों से मिली हूं उनसे नरम मिजाज कोई नहीं होता, वो होते होंगे अपनी कार्यशैली में डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन होता है, समय की एक सीमा रेखा को वो समझते हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत औपचारिकताएं भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सेना में पत्नियों का सम्मान बहुत है, और क्योंकि हम बहुत सारे समय अकेले रहती हैं तो आपस में एक परिवार की तरह रहता है। तो अंशु से तो मतलब अगर मैं बात कहूं तो उनसे बड़ा मेरे लिए सपोर्टर कोई नहीं रहा। उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं, और तुम्हें याद होगा कि मैं एक हिंदी नेस्ट नाम से एक साहित्यिक पत्रिका, वेब पोर्टल
1: जी,
0: जो कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल है, वो हमने शुरू किया था। वो अंशु ने ही चाहा था कि मैं साहित्य में इस तरह से इन्वॉल्व हूं, तो मैंने उनकी सहायता से उसे आरंभ किया था
1: जी।
0: तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, कड़क वो नहीं है बिल्कुल भी, और अनुशासित है।
1: वैसे तो बहुत नरम दिल लगते हैं बात
0: जी,
1: क्योंकि हमारी भी मुलाकात हो चुकी है, और आपकी जो एक कार्यशाला है उस कार्यशाला में बाकायदा वो सहयात्री से नजर आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पति का साथ आपकी निजी जिंदगी में तो होता ही है, लेकिन आपकी व्यावसायिक जिंदगी में जहां पे आपका लेखन है वहां पर अगर पति पूरी तरह समर्पित हो तो ये बड़ी बात है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और अब बात चल रही है अंशु जी की, आपके जीवन साथी की, तो मुझे लगता है यहां पर एक गाना होना चाहिए उनके नाम।
0: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई थी तो मुझसे कहा गया कि कोई गाना सुनाइए, तो मुझे उनकी आंखें देखकर एक ही गाना याद आया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
1: तो सुनते हैं घर फिल्म का

0: की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है, तो कहां से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है। हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं, कैसे आपके जहन में ये विचार आया, विस्थापन की बातें हैं इसमें?
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूं तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है।
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहां के अनुभवों को देखना हुआ, तो मैं हमेशा ये कहा करती हूं कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है। तो जब वहां से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है, जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर। तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी।
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी। वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे, और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था तब। पोस्टिंग हुई एक डेढ़ साल और बस वहां रहे और आ गए, ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए। लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब मैं लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य अकेडमी की एक कार्यशाला हुई
0: थी। अभी युवा लेखक हैं आप कोई कह नहीं सकता कि आप
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ, तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वो ब्लॉग का जमाना था तो ब्लॉग पे काफी चीजें, मेरे को लगता था कि ब्लॉग को एक फॉर्म बना के शिगाफ नाम से उपन्यास लिखा जाए, तो मैंने उसको लिखा दो सहेलियों के बहाने से।
0: तो और ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, लोगों ने इसे एक पाठशाला की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके और हम सबके बाद की पीढ़ी के युवा लेखक आते हैं, तो वो उपन्यास लिखने के लिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने भी उसे इसलिए पढ़ा कि देखती हूँ उपन्यास लिखने की शैली कैसे होती है और उसमें से क्या कुछ सीखा जा सकता है, तो मेरे लिए भी बहुत ये बड़ी बात है और इस उपन्यास को मैंने भी बहुत पसंद किया है। अब हम आपके उपन्यास स्वप्नपाश की बात करते हैं, जो मानसिक तनाव की और एक तरह से मानसिक रोग की बात भी है।
1: बिल्कुल,
0: तो कैसे आपने लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहां से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिज़ोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था
0: जी,
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वायुसेना में ही थे डॉक्टर दीक्षित, उन्होंने पूछा क्या तुम जानते हो सिज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए
0: जी,
1: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं, एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं, तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप है उन पे बहुत कम किताबें हैं। तो क्योंकि मैं फिर यहाँ विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की, तो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने कुछ पात्रों से मिली, मैं
0: जी
1: एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था, उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे, तो वो अपने आप से बात करता था। हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग, उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था। तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा, तो जो सिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनको वो सब चीजें दिखाई देती हैं, तो जैसे होता ना कि हमारी कोई अखबार छप के आया उसमें डबल छपाई आ जाती है, तो ऐसे ही केमिकल लोचा है जिससे दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे भ्रमों के साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा, तो मैंने गुलनाज फरीबा नाम के एक कलाकार को लिया
0: जी, जी।
1: क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट बहुत प्रतिभाशाली लोगों में सिज़ोफ्रेनिया होता है, अगर हम देखें तो बहुत सारे पेंटर्स वॉन गॉग सहित सिज़ोफ्रेनिया के शिकार रहे हैं, तो तब मैंने उसको एक पेंटर बनाया और उसके जीवन को लिखा। तो ये लिखना मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था।

0: इतना आसान नहीं था
1: और पढ़ना भी बहुत पीड़ादायक है क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे तो कुछ घटनाएं बहुत लोमहर्षक, मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे वो बचपन की जो कुछ बातें उस कैरेक्टर की, लड़की कैरेक्टर है, उसके बचपन की यादें जो आपने ताजा की करवाई, कि मतलब डॉक्टर पूछ रहा है सवाल और वो अपनी यादों में जाती है, तो वो सब भी लगता है कि वो लड़कियों के साथ अमूमन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पुरुष किसी न किसी बहाने स्पर्श करते हैं, तो वो बड़ा त्रासद होता है,
0: अवांछित स्पर्श।
1: हाँ, और वो समाज को एक संदेश भी देता है उपन्यास। ऐसे ही एक उपन्यास है पंचकन्या, जिसे आपने लिखा, जिसमें स्त्री पात्र हैं, तो क्या स्त्री पात्रों के जरिए कुछ समाज को संदेश भी देना चाहती हैं?
0: बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती थी कि जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जिसको हम आयात कर लेते हैं, हम इसको पाश्चात्य दुनिया से लाते हैं कि हम सिमोन द बोवार और वर्जीनिया वुल्फ और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट जो पाश्चात्य उसमें हुई है
1: जी,
0: तो हम उसको हूबहू भारत पे लाके लागू कर देते हैं। वहीं मैंने एलिस वॉकर को देखा, उन्होंने कहा कि हम लैटिन अमेरिकन औरतों का फेमिनिज्म पाश्चात्य आधुनिक स्त्रियों से अलग है क्योंकि हम नाचना पसंद करती हैं, हम श्रृंगार करना पसंद करती हैं
1: और गहने पहनना।
0: और वहां पे अगर पाश्चात्य बिल्कुल यूरोपियन अगर हम फेमिनिज्म की तरफ देखें तो वहां तो वो सजने को पुरुष के लिए मान लेती हैं। तो मुझे लगा कि हमारा अपना फेमिनिज्म कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में भी रहा होगा, ऐसे ही तो नहीं हमारे यहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी या लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां हुई हैं। तब मैंने एक लेख पढ़ा था पंचकन्या द वुमन ऑफ सबस्टेंस, एक आईएएस अधिकारी थे प्रदीप भट्टाचार्य जी, उन्होंने इन पंचकन्याओं पर लेख लिखा था कि ये वे स्त्रियां हैं ये पांचों जो कन्या कही गई लेकिन इनसे एक से अधिक पुरुषों से इनके संबंध रहे। तो मैं चौंक गई कि ऐसे फिर क्यों कन्या कहा गया होगा। तो उनका कन्या होना उन पुरुषों की छाया में होने से नहीं था, वो अपने आप में कन्या थी
1: जी जी,
0: कि मतलब उनका पुरुष की छायाएं उनके ऊपर नहीं थी सतियों की तरह, वो अपने आप में आजाद स्त्रियां थी। और पुराणों में कहा जाता है इन पांचों स्त्रियों के स्मरण मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं। ये स्त्रियां कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इन सब के पैरेलल मैंने आधुनिक स्त्रियों को गढ़ा और इस उपन्यास को लिखा। तो ये मेरा शिगाफ के बाद दूसरा उपन्यास था जिसे लिख के मुझे संतुष्टि हुई
1: जी। और आगे भी उपन्यास की यात्रा जारी है, यहाँ पर हम एक विराम देते हैं और एक गाना सुनते हैं। कौन सा?
0: बिल्कुल, एक गाना मुझे गृह प्रवेश फिल्म का बड़ा पसंद था।
1: हाँ।
0: आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के खुदा होते।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना।

0: आप अगर आप न होते तो क्या होते, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक साहित्यकार न होती तो क्या होती, क्योंकि आपने कथक की दुनिया में भी कदम रखा था और विशारद किया है, तो बताइए।
1: मैं बहुत कुछ होना चाहती थी ममता, मैं यकीन नहीं करूंगी मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती,
0: क्या बात है
1: लेकिन पापा के थप्पड़ ने और डांट ने कहा नहीं वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जमाना था, लड़कियों को बहुत सुरक्षित रख के चलने का जमाना था, और मैं एक बहुत छोटे शहर राजस्थान के एक बहुत छोटे कस्बे से आती हूँ चित्तौड़गढ़ से
0: जी,
1: तो जहाँ पे सोच पाना भी मुश्किल था कि आप मुंबई जाओगे और मॉडलिंग करोगे। उसके बाद फिर मेरे को डांस मेरा दूसरा पैशन था, तो कथक मैंने सीखा, तो आधा कथक मैंने शादी से पहले कॉलेज टाइम में सीखा और आधा शादी के बाद बच्चों को थोड़ा स्कूल भेज के दोबारा सीखा
0: जी,
1: तो मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे सपने थे, लेकिन अंततः मेरे हिस्से में एक डेस्क आई और पेन आया और कलम आई कि मुझे लिखना है। तो कथक की ये बातें कि मुझे संयोग से ग्वालियर में रायपुर घराने के एक टीचर मिल गए थे
0: जी,
1: तो मणिका जी थी, और तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी। तो बात कथक की चली है तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कथक में जब कोई इस तरह मतलब विशारद किया है तो बड़ी बात है, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूं और कोई बड़े आयोजन में भाग लूं हिस्सा लूं?
1: वही बात फिर आयावरी की आ जाती है ना कि जैसे ही ऐसा अवसर आया कि तीन साल हो मतलब मेरे को सीखते हुए छह साल हो गए तो ट्रांसफर का फरमान आ गया, और होता ये कि आप अपने गुरुजी के साथ ही आप सामूहिक कथक एकल तो होता ही है और आरंभ में आपको सामूहिक प्रस्तुतियां देनी होती हैं, तो ट्रांसफर हो गया और हमारा जो समूह था उससे मेरी दूरी हो गई, तो वो कथक वहीं छूट गया, लेकिन मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली और छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कोरियोग्राफीज की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मुझे याद है कि मैं अपने जो मनिका मैम थी उनके यहाँ जाती थी, तो मैं कथक पे भी किताबें पढ़ना पसंद करती थी, वो कहती हम लड़कियों को कहते रहते हैं किताबें पढ़ो जो कथक का इतिहास है, तुम ही एक हो जो ढेर ढेर सारी किताबें ले जाती हो, तो तब तक मैंने जब तक विशारद किया मैं ना बहुत सारा कथक का इतिहास बहुत सारा विश्लेषण वो पढ़ चुकी थी, और अगर मैं कहूं कि उस इतिहास और विश्लेषण के चलते फिर मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी बिरजू लय
0: जी जी,
1: तो मेरा सारा फिर वो रिव्यू समीक्षा और कलात्मक समीक्षा कलात्मक वैचारिक की तरफ ध्यान चला गया
0: जी।
1: फिर मैंने प्रेरणा श्रीमाली जी का लंबा इंटरव्यू किया, बिरजू महाराज पे किताब लिखी, तो मेरा जो कथक करने का और मंच का जो शौक था
0: पूरा
1: वो लेखन की तरफ चला आया, और आज भी मैं अगर कला वैचारिकी पे कथक पे लिखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
0: बिल्कुल, और ये जो आपने कहा ना कि मेरे हिस्से में लेखन आया, मेरे ख्याल से कि अगर ये ना आता तो हम सब लोग वंचित रहते, और आपने लेखन की दुनिया में अपना नाम दर्ज किया विशिष्ट तरीके से और महिलाओं के लिए खासतौर से ये प्रेरणा की बात है। यहाँ पर हम एक गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि बात कथक की चली है और कोई गाना ना हो जिसमें नृत्य वाली बात ना हो तो हाँ, फिर
1: मुझे आम्रपाली फिल्म बहुत पसंद थी और मैं उसमें वैजयंती माला

0: डांसेस देखती रह जाती थी और मुझे जो बहुत पसंद था, और मैंने कॉलेज में इस गाने को एक प्रतियोगिता में किया भी था और प्रथम पुरस्कार मिला था मुझे, नील गगन की छाओ में दिल रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
1: क्या बात है। वैसे कथक सीखा है आपने तो निश्चित रूप से डांस के साथ थोड़ा थोड़ा तो गुनगुनाती होंगी, और हमने सुना है, अगर ये गुनगुना के आप सुनाए तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: ये तो बहुत ऐसा क्लासिकल गाना है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नील गगन की छाओ में

0: मनीषा जी, आपकी कौन सी कृति आपके सबसे दिल के करीब है?
1: निश्चित तौर पे मल्लिका।
0: मल्लिका? हाँ, हम जानते थे क्योंकि साहित्य की दुनिया में, अपने श्रोताओं को बता दें जो साहित्य में दखल नहीं रखते, कि मनीषा कुलश्रेष्ठ को इन दिनों साहित्य की मल्लिका कहा जाता है।
1: अरे,
0: तो आप मल्लिका के बारे में बताइए, कहाँ से इंस्पायर हुए, क्योंकि ये एक यथार्थवादी उपन्यास है।
1: बिल्कुल, हुआ ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत पहले मल्लिका पे एक आलेख आया था जिसे मैंने पढ़ा था। उसके बाद कथादेश पत्रिका आती है, उसमें मल्लिका पर एक अंक निकला था, मल्लिका और भारती हरिश्चंद्र जी पे। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई थी कि मल्लिका पत्नी तो नहीं थी, अगर हम उनको कहें कि वो उनकी प्रेरणा थी, तो उनका भारतेंदु जी पे असर और मल्लिका पे जो जितने आलेख मैंने पढ़े, तो मुझे उसने बड़ा आकर्षित किया कि ये मल्लिका कैसी रही होंगी जिन्होंने भारतेंदु जी के लिए पहले अनुवाद किए बंगला से हिंदी में, और फिर हिंदी में खुद उपन्यास लिखे और कुछ पत्रिकाएं संपादित की, और लगातार भारतेंदु जी के साथ में वे बनी रही। तो उनका एक फोटो भी उसमें छपा करता था, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक हल्की सी उदास स्त्री जो बाल विधवा रही थी। तो मुझे मल्लिका के इस चरित्र ने सालों सालों सालों हॉन्ट किया, मेरे अंदर रही और हमेशा मुझे कुरेदती रही। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, बहुत सारी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनकी जीवनियां, आत्मकथा तो वो नहीं लिख सके थे, जीवनियां जो थी वो मंगवाई मैंने, श्याम सुंदर दास जी की और ब्रजरतन दास जी की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन किताबों में ये हुई कि जहां मल्लिका का जिक्र था, उन अध्यायों का नाम था चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा। तो ये बात मुझे आहत कर गई। तब मैंने मल्लिका का लिखा हुआ पढ़ा, जितने भी उनके आधे अधूरे कुछ पूरे उपन्यास हैं वो मैंने पढ़े, और जब मैंने

0: तो मुझे लगा कि मल्लिका के अंदर एक कमाल का पोटेंशियल था लिखने का, और उनकी दृष्टि उस समय में स्वतंत्रता से पहले उस समय में इतनी सुलझी हुई और खुली हुई थी कि वो बहुत अच्छे से स्त्री अधिकारों पे लिख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं मल्लिका के जीवन पे लिखूं, लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि मल्लिका का बचपन, मल्लिका के बनारस आने से पहले का जीवन किसी को कुछ नहीं मालूम था, वो सब मुझे कल्पनाओं से और थोड़े तथ्यों से बुनना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा कि वो बंकिम जी के ही कुल से कहीं दूर से संबंधित थी, तो मैंने उसमें बंकिम जी को भी एक पात्र के तौर पर रखा और मल्लिका काफी करीब उनको बताया कि मल्लिका उनसे प्रेरणा लेती थी। और मजेदार ये बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बंकिम के उपन्यासों का मल्लिका की सहायता से अनुवाद भी। और एक और जो बात है, उपन्यास शब्द हिंदी साहित्य में प्रेमिका के जरिए आया उपन्यास, क्योंकि अपने यहां बंगला में नॉवल को उपन्यास कहते थे, बाकी गुजराती और मराठी में नवल कथा, हिंदी में आख्यान ही कहा जाता था। तो जब मल्लिका आई तो ये इस पूरी विधा का नाम अपने साथ लाई।
1: क्या बात है, ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, लेखन के साथ जो लेखन की जो परतें होती हैं वो लेखक ही बता सकता है, पाठक उसे पढ़ता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो एक लेखक ही बता सकता है।
0: मल्लिका लिखने के दौरान ना मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए, जैसे कि मैंने उसमें एक सीढ़ियां रची, क्योंकि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर कभी पहले नहीं देखा था, तो मैंने ऐसी सीढ़ियां रची जिनसे होके मल्लिका सीधे भारतेंदु जी के कमरे में जाती थी बिना उनकी पत्नी को पता चले, और भी लेखक उसी से जाते होंगे, मैंने ऐसी कल्पना की। और जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जब मल्लिका का वहां पर विमोचन हुआ और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो सीढ़ियां वहां थी।
1: गजब, क्या बात है।
0: तो ऐसे ऐसे अगर मैं कहूं कि इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपने लिखा।
1: और वो उपन्यास खूब चर्चित भी हुआ, सराहा भी गया, निश्चित रूप से जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो जो आपकी बातें हैं उन बातों से तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और एक खास बात पता चलेगी कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में उपन्यास के माध्यम से जानना एक अलग तरह का अनुभव होता है। आपकी अन्य कहानियों में भी मनीषा जी सूक्ष्म परिदृश्य होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से दृश्य देखते हुए चलते हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों को भी बहुत गहराई से आपने छुआ है। आप अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी वो कहानियां हैं जिनमें ये सूक्ष्म दृष्टांत हम देख सकते हैं।
0: सबसे पहले तो कठपुतलियां ही जिसे मेरी प्रतिनिधि कहानी कहा जाता है
1: जी।
0: तो कैसे एक ग्रामीण लड़की की शादी एक कठपुतली वाले से हो जाती है, वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके तो धागे बांध दिए हैं, और उसके विवाह से पहले का एक प्रेमी होता है वो उसे मिलती है। ऐसी कहानी है जिसमें कोई विलन नहीं था, उसमें समय विलन है, तो वो लिखने में मुझे आनंद आया क्योंकि मैं मरुस्थल के उन दृश्यों से वाकिफ हूँ। मैंने वो आंधियां देखी हैं, पीली आंधियां जिनमें घिर के मटके से पानी भर के लाने वाली स्त्रियां घिर जाती हैं और खो जाती हैं।
1: क्या बात,
0: तो
1: राजस्थान में,
0: राजस्थान तो मैं मरुस्थल रचना चाहती थी, मैं वो दृश्य रचना चाहती थी जो हिंदी के पाठक ने नहीं पढ़े थे, तो मैंने इसलिए भी कठपुतलियां लिखा। और खाप पंचायतों का दौर था, तो वहां पर क्योंकि वो अनचाहा गर्भ है उसे सुगना को, तो उसके पर इल्जाम लगता है और उसकी हथेलियों पे गर्म ईंट रखने का एक दृश्य है, तो वो मैंने रचा, एक आंधी का दृश्य रचा। तो कठपुतलियां मेरी आरंभिक कहानियों में से है। तब मुझे पता चला कि कहानी में दृश्यात्मकता की कितनी आवश्यकता और कितना महत्व होता है, क्योंकि वो दृश्य आपको उनमें एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और कहानी में प्रवेश देते हैं। तो बतौर पाठक भी मुझे वो कहानियां पसंद आती हैं जिनमें सूक्ष्म दृश्यात्मकता हो, जैसे उसमें एक सांप है जो टेढ़ा चलने वाला सांप है जिसको साइड वाइंडर कहते हैं, तो वो सांप क्योंकि वो मरुस्थल में ही मिलता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है।
1: क्या बात है,
0: तो आप सूक्ष्म प्रकृति को भी वहां पे पात्र बनाएं। और कोई भी दृश्य रचे तो हमेशा कहा जाता है ना, कहानी लिखिए नहीं, दिखाइए। तो मैं इस बात में बहुत गहरा यकीन करती हूँ कि कहानी को दिखाया जाए।
1: क्या बात है, तो आपकी बातों को सुनते हुए हमें खुद लग रहा है कि मैं एक खुद पाठक बन गई हूँ और आपकी कहानियों को याद कर रही हूँ, वो दृश्य मेरे सामने चल रहे हैं कि सचमुच लिखते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारे लेखन की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक मास्टरपीस है ये बातें।

0: और पाठशाला की तरह ही, और रेडियो सुन सुन के तो बहुत कुछ सीखा जाता है, तो आपकी ये बातें सुनकर हमें लगता है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सीखेंगे। या अब हम आपके इस पर आते हैं शाल भंजिका, तो शाल भंजिका के बारे में भी बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको लिखने की।
1: शाल भंजिका की प्रेरणा, क्योंकि शाल भंजिका तो एक प्रेम कथा है, तो कोई इसके लिए एक खास किस्म की ऐसे प्रेरणा या इस किताब ने मुझे लंबा अपने भीतर रखा और उसके बाद मैंने रचा, ऐसी बात इसके साथ नहीं थी। इसको मैं सीधे ही लिखती चली गई, क्योंकि मेरे पास
0: मुश्किल होता है प्रेम कहानी लिखना।
1: जब रविंद्र कालिया जी का फोन आया था कि मुझे तुम्हारा एक लघु उपन्यास चाहिए जो मुझे ज्ञानोदय में छापना है पूरा का पूरा, तो उस दबाव के तहत तब मैं देखती थी कि फिल्म मेकर्स, तब नए नए फिल्म मेकर्स आए थे और उनकी हिंदी फिल्म में ही और विदेशी फिल्मों में भी वो अलग तरह से स्त्रियों को अपनी कहानियों में ला रहे थे। तो मैंने एक फिल्म मेकर और उसकी पूर्व प्रेमिका जिसको वो रचना चाहता है, वो अपनी फिल्म में लाना चाहता है, उसके लिए वो जीवन भर भटकता है ढूंढता है वैसी ही कोई पात्र, तो मुझे लगा कि ये जो तलाश है इसको मैं लिखूं। और ये अनायास ही ऐसे ही लिखी गई छोटी सी किताब है और सब इसको पढ़ते हैं तो पूछते हैं शाल भंजिका नाम क्यों, क्योंकि शाल भंजिकाएं वो होती हैं जो एक डाल को पकड़ के खड़ी होती हैं, बौद्ध काल की मूर्तियों को कहा जाता है जो उर्वरता का प्रतीक है। इसमें जो मेरी नायिका पद्मा है हमेशा एक पेड़ की डाल पकड़ के फोटो खिंचाती है,
0: अच्छा,
1: तो वो जो फिल्म मेकर है वो हमेशा कहते हैं तो हमेशा फोटो खिंचाते हुए शाल भंजिका क्यों बन जाती हो, तो एक सिंबॉलिक तरीके से इसका शीर्षक आया है
0: जी। और कितनी सारी परतें खुल रही हैं आपकी आपके लेखन की, क्योंकि पढ़ते समय ये बातें हमारे जहन में नहीं आती है। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती।
0: क्या बात है, हम सबका पसंदीदा गाना फिल्म तुम्हारे लिए, लता दीदी की आवाज, सुनते हैं यही गाना।

0: मनीषा जी, एक साहित्य के अलावा आप में जो गुण हमें दिखाई देता है बतौर एक पाठक और सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके भीतर एक यायावरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, मुझे लगता है सच होगी। और आप विदेशों की यात्रा बहुत की है, वहां से भी कुछ उपन्यास आपने जहन में लाया है, त्रिमाया और किनाया की हम बात करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल ममता, मेरी देश में जो एक खास किस्म की यायावरी रही तो हुआ ये कि मेरी लास्ट जो तीन पोस्टिंग्स थी संयोग से ऐसी हुई कि मुझे मात्र सत्तात्मक समाजों का पता चला।
0: अच्छा,
1: झल्दापारा हमारी पोस्टिंग थी, वहां पे हाथियों की मात्र सत्ताएं थी और मैंने हाथियों के रेस्क्यू सेंटर और हाथियों के झुंड के जरिए वहां जाकर पहली बार जाना कि इनके झुंड का मुखिया हाथी नहीं, हथिनी होती है। और बड़ी सूझबूझ से वो हथिनियां अपना परिवार बड़ा बड़ा 50-50, 60-60 हाथियों का लेकर चलती हैं। वो पोस्टिंग हुई, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई शिलोंग। शिलोंग में खासी समाज था जहाँ पे मातृवंशी प्रणालियां होती हैं, वहाँ स्त्री मुखिया होती है और स्त्री की जितनी जायदाद है उस सबसे छोटी बेटी को मिलती है।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद हमारी तीसरी पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में वहाँ नायर समाज था जहाँ पे लंबे समय तक मातृवंशी प्रणाली चली थी समाज की। तो मुझे लगा कि ये चीज कुछ मुझे कह रही है कि मैं मात्र सत्तात्मक समाजों और मातृवंशी समाजों के बारे में पढ़ूं और जानूं और लिखूं। तो मैंने हाथियों से शुरू किया पढ़ना और मैंने देखा कि हमारी मातृवंशी प्रणालियों को तो बहुत चुनौतियां हैं।
0: जी जी,
1: जैसे नायर जो मातृवंशी प्रणाली थी उसे तो समाप्त कर दिया गया था पुरुषों के इंटरवेंशन से, क्योंकि उनको शर्म आती थी कि उनके पिता कौन है उन्हें नहीं पता।
0: बिल्कुल।
1: तो जब वो ब्रिटिश राज्य आया और बरतानवी नैतिकता, जो जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं, वो आई, तो नायर समाज ने अपने आप को बदलने का ठाना और रानी सेतु लक्ष्मी के हस्ताक्षर से मातृसत्ता समाप्त कर दी गई।
0: जी जी।
1: तो यही खासी समाज भी एक आजकल झेल रहा है कि इनकी जो मातृवंशी प्रणाली है इसको समाप्त करने की बार बार आंदोलन होते हैं, लेकिन हाथियों में सदियों सदियों सदियों से अभी तक कुल माताएं हैं, उनको कोई नर हाथी आके चुनौती नहीं देते कि तुम अपना ये कुल खत्म कर दो।
0: जी।
1: तो इसके बरक्स मैंने मनुष्यों और हाथियों के व्यवहार को और मात्र सत्तात्मक समाजों के अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को त्रिमाया उपन्यास में लिखा। जो एक तो यायावरी मुझे यहाँ काम आई।
0: और यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं, मुझे बताइए कि त्रिमाया जो हाथियों की ये जो बातें आप बता रही हैं इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें, तो ये आपको कहाँ से पता चली, किस तरह का रिसर्च किया आपने और कहाँ से? दूसरी बात कि ये कितना चुनौतीपूर्ण था? ये
1: बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले तो शौकिया मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं झल्दापारा में थी, वहां रेस्क्यू सेंटर था हाथियों का। तो वहां पे एक लैला नाम की हथिनी थी और ढेर सारे अनाथ हाथियों के बच्चे थे। उन सबको लैला ने बड़ा किया और लैला ने अपना एक झुंड बना लिया और वो जंगल में विचरने लगी और कई बार रेस्क्यू सेंटर आती थी और जंगल में चली जाती थी, उसका अपना झुंड था। तब मैंने जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हाथियों के कॉरिडोर्स के बारे में, मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम मनुष्यों ने हाथियों के कॉरिडोर चाय बागानों में और खेतों में बदल डाले हैं और वो आज भी वहीं से गुजरना चाहते हैं क्योंकि वो सदियों से उनकी जो स्मृति में संचित है। तो वो बड़ा संघर्ष है जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी मैं इस किताब में लाई हूँ। तो रिसर्च की, लेकिन ये बड़ी आनंदी रिसर्च थी और लिखते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि मुझे अपने अंदर एक हाथी को उतारना पड़ा, मुझे महसूस करना पड़ा मेरी एक सूंड है।
0: जी जी जी।
1: जो प्रेम में कैसे काम आती है, भूख में कैसे काम आती है।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे हाथी वाला चैप्टर लिखने में, जो माया है, माया द एलिफेंट, उसको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। हालांकि माया मार्गरेटा और माया को लिखने में भी आनंद आया, लेकिन ये सबसे तो पूरा रिसर्च बेस्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोधात्मक उपन्यास लिखते हैं, उसको बर्फ के नीचे जैसे झील होती है ना, तो वो जो झील का पानी है वो शोध हो, ऊपर बर्फ रहे, तो ऊपर रचनात्मकता रहे, कहानी रहे, शोध अंदर से झांकता रहे।
0: क्या बात है।
1: तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोध, मेरे ज्यादातर उपन्यास शोधपरक है, स्वप्नपाश

0: मल्लिका भी और पंचकन्या भी और अब त्रिमाया, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शोध कहानी पे हावी ना हो।
1: बिल्कुल, तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं और जो मर्म है वो बचा रहे हैं, और ये तो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और आपने बताया भी कि सूंड के जरिए प्रेम करना कैसे, ये कल्पना भी करना कितना मुश्किल होता है कि आप उस हाथी के भीतर उसके मन में घुस के
0: पर काया प्रवेश।
1: और शोध परक मुझे लगता है एक और उपन्यास है आपका जो यायावरी पर है, किनाया
0: जी,
1: और विदेशों की यात्रा के दौरान, उसमें तो बहुत सारे राइटर्स भी हैं जो
0: नहीं, वो घुमक्कड़ी वो अलग है, वो घुमक्कड़ी अंग्रेजी साहित्य के गलियारों से वो तो यात्रा वृत्तांत ही है, लेकिन किनाया मैं तुर्की गई थी, तो तुर्की की यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वहां पर जितनी आजादी है उतना ही अपनी परंपराओं से एक जुड़ाव है, खास किस्म का स्त्रियों का। तो मैंने वहां स्त्रियों को बहुत उन्मुक्त भी देखा और उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी देखा। दरअसल मैं गई थी अपनी बहन के साथ जो कि एक पर्यावरणविद है, वो सॉल्ट लेक पे काम करती है, वो सॉल्ट लेक सोसाइटी की एनुअल मीट थी, तो मेरी दीदी मुझे एक अपने साथी की तरह ले गई थी। तो वहां पे सारे साइंटिस्ट थे जो पर्यावरण की चिंता करते थे, और सुबह वो बोलते थे कि एक दिन पानी सिर्फ आंख में रह जाएगा, और शाम को जम के डांस करते थे, मस्ती करते थे। तो मैं यही कहती थी, आप लोग सुबह तो इतना डरा देते हो और शाम को आप लोग पार्टी करते हो। तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि तुम्हें हम में से कोई नायक नायिका मिला क्या, क्या तुम कुछ लिखोगी क्या? तो मैंने कहा आप सब तो मिडिल एज्ड है। तो उन्होंने कहा क्यों, मिडिल एज्ड रोमांस नहीं करते? तो इस कथा में, क्योंकि मैं तुर्की की जो यात्रा थी
1: उसको, आपकी किताब में भी है
0: बिल्कुल, तो मैं इस तुर्की की यात्रा थी, मैं इसको केवल यात्रा वृत्तांत में नहीं ढालना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मध्य वयस्य स्त्री पुरुषों के बीच के प्रेम की जो एक गहनता है, एक अनुभव है, और वो जो मनोविज्ञान है, उसको मैं इस उपन्यास में यात्रा के साथ लेके आऊं। तो इसमें समूचे आपको तुर्की घूमने को भी मिलेगा, और दो मध्य वयसीय, एक जो इतिहासकार है और एक पर्यावरणवादी स्त्री है, दोनों के बीच का प्रेम, एक परिपक्व प्रेम जिसको हम सच में जैसे मैच्योर प्रेम कहते हैं, वो इसमें मिलेगा।
1: उस प्रेम से मतलब वो देह से आगे है, वो प्रेम है लगता है,
0: देह है उसमें, लेकिन देह से आगे वहां पर उस तरीके की खींचतान नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेम में हम बहुत खींचते हैं एक दूसरे को और अधिकार जमाते हैं, वहां वो अधिकार वाली भावनाएं नहीं है, एक दूसरे को उन्मुक्त छोड़ के, एक दूसरे के ऊपर बिना बोझ बने जो वो प्रेम है वो उसकी है, कि तुम दोनों आजाद भी हैं, हमारी वो आजादी भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये प्रेम से ज्यादा मित्रता और साथ और एक उन्मुक्तता की बात भी है।
1: बहुत बढ़िया लग रही है बातें आपकी, और ऐसे लग रहा है कि वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये प्रेरक बातें हैं। किनाया हमारी भी अधूरी छूट गई है, तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि अब किसी तरह से ये किताब लेकर कहीं से पढ़ूंगी। और पर्यावरण की बात आप कर रही थी मनीषा जी, और ये जो त्रिमाया है, हाथियों का पूरा समूह है, तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाते हैं, उसके बारे में बताइए।
0: बिल्कुल ममता, सबसे पहले तो मेरा पूरा परिवार बायोलॉजिस्टों का परिवार है, उनमें से मेरी बेटी तक चला आया है वो पूरा जीनोटाइप। मेरे ताऊजी बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन पूरी कॉन्फ्रेंसेस में पूरे विश्व भर में जाते थे। मेरी बहन जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ मैं सॉल्ट लेक सोसाइटी में गई, मेरी बेटी, मेरे भाई हैं वो असद रहमानी जी के साथ काम करते हैं और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं,
1: तो रेडियो से बहुत प्रेम करते हैं,
0: रेडियो से जो आपकी आवाज से ममता प्रेम करते हैं,
1: शुक्रिया।
0: मनोज कुलश्रेष्ठ उनका नाम है, तो
1: सखी सहेली
0: उनका प्रिय कार्यक्रम है। तो उन सबके सानिध्य में मैं रही, बचपन से पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम रही, घर में कोई ना कोई, कभी जयपुर में मेरे भाई का काम चल रहा होता था, कभी मेरी बहन सांभर लेक के पक्षियों पे काम कर रही होती थी, तो ये सारा माहौल घर में रहा। तो इस मुहिम को एक अपरोक्ष तौर पे मैं चलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जमीनी काम तो नहीं कर पाती हूँ कि मैंने जमीनी काम किए हो और मैंने कहीं जमीन पे कोई आंदोलन किए हो, लेकिन मेरे लेखन में और लगातार जब मैं लिखती हूँ पर्यावरण पे, तो उसके बहाने मेरा एक काम चलता रहता है, और सोशल मीडिया पे भी मेरी उपस्थिति रहती है, और कभी भी इस तरह जयपुर में अगर कोई जंगल कट रहा है तो मैं वहां जरूर जाके खड़ी होती हूँ, और मेरे लेखन में ये बड़ी शिद्दत से आता है। तो किनाया में भी आया है कि कैसे सॉल्ट लेक सिमट

0: बात इसकी विदेशी जो लिखी आपने तुर्की के बारे में, तो वहां कुछ साहित्यकारों को आपने देखा, जैसे मैंने आपकी किताब में पढ़ा था घुमक्कड़ी, तो उसमें शेक्सपियर का नाम है, वर्ड्सवर्थ का,
1: तो वो एक अलग मुहिम थी। हुआ ये कि तीन बार मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, एक बार अवार्ड फंक्शन था, उसके अलावा भी दो बार मुझे और जाना पड़ा इंग्लैंड। तो हुआ ये कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को

0: कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को जिनको हम सब बहुत क्लासिक की तरह पढ़ते आए हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ भी है, तो जेम्स जॉयस भी है, तो इन सबको पढ़ा जाए, मतलब इन सबके घरों में जाया जाए। और मजेदार बात यह कि उन सबके घरों को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स में बदला हुआ है और उनको ट्रस्ट चला रही है। और वो जो पूरे शहर है, जैसे अगर मैं बात कहूं तो जेन ऑस्टन का म्यूजियम है, वहां पे बिल्कुल माहौल बनाया जाता है कि आप जाएंगे तो मिस्टर डार्सी आपको मिलेंगे प्राइड प्रिजुडिस के, वो वस्त्र पहने हुए,
1: अच्छा,
0: और जेन ऑस्टिन के चीजें मिलेंगी। तो जब एक यात्रा में ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे जुनून आ गया। मैंने कहा अब मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगी और मैं नदर्न आयरलैंड भी जाऊंगी और हो सका तो डबलिन भी जाऊंगी। तो मैंने ऐसे करके पूरी यात्रा की 3 बार में, और मैंने सारे जितने भी इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के लेखक थे उन सबके, जितने संभव हो सकते थे थॉमस हार्डी तक, सबके घर जा जाके वहां उस माहौल को महसूस किया और उस पे किताब लिखी घुमक्कड़ी साहित्य के गलियारों से।
1: क्या बात है। तो लिखने के मकसद से आप गई थी या घूमने गई थी?
0: पहली बार तो मैं घूमने गई थी और संयोग से मैं, जैसे अब मैं कोलकाता भी जाती हूँ तो मैं ठाकुरबाड़ी जरूर जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं गई थी। तो मैंने कहा कीट्स हाउस तो जाएंगे, कीट्स को इतना पढ़ा है हमने, तो कीट्स के घर गए। तो मुझे लगा कि यार ये जुनून है, इस जुनून को तो पूरा किया जाए, फिर वो जुनून बन गया। शुरुआत में तो मैं ऐसे घूमने ही गई थी।
1: तो लिखने को इतना तवज्जो देती हैं इसलिए आपका लेखन संसार इतना विराट है। आप मनीषा जी अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान की रहने वाली हैं, जहां पर लोक संस्कृति लोक कला बेशुमार है, आपके लेखन में क्या आप इस्तेमाल करती हैं आप अपने लेखन में?
0: बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरी जितनी अगर कहें कि सारी जो कहानियां जिनको लोग याद करते हैं, कठपुतलियां, कुर्जा, स्वांग, ठगिनी, सब में राजस्थान आया है। किरदार कहानी है जिसमें जयपुर के अंदरूनी इलाके आए हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं राजस्थान के माहौल को एक अलग ढंग से, सब अलग अलग तरीके से अपने जमीन को याद करते हैं, सब अलग अलग ढंग से उसके दृश्य गढ़ते हैं। तो मैंने अपने ढंग से अपने राजस्थान को अपनी कहानियों में रखा है।
1: क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: राजस्थान को याद करते हुए सुनाएंगे या कोई और?
0: हाँ, तो राजस्थान को याद करते हुए वो जो साथ
1: हिंदुस्तानी,
0: हाँ बिल्कुल, पीतल की मोरी गागरी। चलो
1: तो चलते हैं राजस्थान की ओर और सुनते हैं यही गाना। पीतल

0: इस गाने के बाद मनीषा जी कुछ कहानियों का जिक्र छूट गया है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानियां हैं? वैसे मुझे लगता है 60-70 कहानियां हो
1: ज्यादा ही है, मतलब 100 से ज्यादा कहानियां लिख ली है।
0: तो कुछ पसंदीदा कहानियों का जिक्र कीजिए आप।
1: मेरा अभी अभी एक कहानी संग्रह आया मन्या, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और बहुत उसको प्रशंसा मिली, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट को हम भूल जाते हैं।
0: जी जी,
1: हम जब आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कहानियां उसमें हैं। तो चाय बागानों में मैं बहुत रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा रहना हुआ, तो वहां से जो चुन के मैं कहानियां लाई थी, तो वन्या में वो कहानियां हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं।
0: और दो चार कहानियों का जिक्र कीजिए जो आपके दिल के करीब।
1: जैसे उसमें वन्या में एक कहानी है नीला घर, वो मेरे दिल के करीब है, और एक कहानी है नर्सरी, वो एक गेंद कहानी कह रही है कि गेंद है तो कैसे बच्चों की नर्सरी से निकल के चाय बागान में घूमती है, और उससे पूरा का पूरा चाय बागानों का आपको जो एक सामाजिक ढांचा है वो समझ में आ जाता है, आर्थिक ढांचा भी।
0: जी, और अपने श्रोताओं को बता दें कि तकरीबन 100 कहानियां हैं, मनीषा जी के 7 उपन्यास हो चुके हैं, यात्रा वृत्तांत, कथक पर कुछ किताबें, ये सब अनगिनत है। तो एक हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इतने विशाल विराट साहित्यकार से हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं। बचपन में कैसी थी पढ़ाई के दिनों में, शरारती या फिर सीधी सादी, क्या वहीं से बीज पड़ गया था?
1: बहुत शरारती, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कहानीकार जरूर बनता है जिसे बहाने बनाने आते हैं। तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपनी मम्मी को होमवर्क नहीं करने की, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी कि मैंने ना पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हों।
0: अच्छा,
1: क्योंकि विज्ञान वैसे भी एक कठिन विषय होता है, तो लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला
0: जी।
1: तो मैं शैतान बच्ची थी लेकिन बहुत जिज्ञासु थी, और साहित्य से मेरा प्रेम था, और बचपन से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था।
0: जी, मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हो रही हैं कि हमें लग रहा है कि अभी और आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे लगता है जो लोग लिखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला तो। लेकिन अब बातचीत को विराम देना पड़ेगा, फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे आपसे। इस वादे के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बातचीत को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों एक कथाचित्रर गीतटी कंठदान करिछन्ति उदित नारायण एवं अलका याग्निक समीरक गीतरे संगीत देइछन्ति अनु मल्लिक।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी
1: पिलाटा पाणिया झाड़ा ही एत सरी ताको टिके ओआरएस दे न ताले आपण माने मन रखुंतु शिशु को तरल झाड़ा हेले ता शरीर जलीय अंश कमी जाए एवं देह सुखिला हो जाए पिलाटा शरीर निस्तेज हो जाए आखि भीतर को पशि जाए एवं चमड़ा थुकड़ा हो जाए यही परिस्थिति रे शिशु को ओआरएस मिशा पानी दियंतु यह प्रस्तुत होबार 24 घंटा पर्यंत रही पारे एथि सहित जिंक बटिका 14 दिन पर्यंत दियंतु।

0: सैलरीड एम्प्लॉय की एवरेज इनकम करीब करीब 23,000 रुपये पर मंथ है, जो कि पहले से करीब 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। ये अनस्किल्ड की जो मिनिमम वेज है उसको भी कई राज्यों में 15,000 से ऊपर कर चुके हैं।
1: श्री वैष्णव कहते 2004-2014 पर्यंत ईपीएफ दरमा सीमा अपरिवर्तित रही है, जहां परवर्त समय सेप्टेम्बर 2014 15,000 टंका वृद्धि करा। वर्तमान यह निष्पत्ति कर्मचारी आय वृद्धि को त्वरान्वित कर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 50 वर्ष निरवच्छिन्न सेवा एवं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भाव 25 वर्ष नेतृत्व समग्र देश को एक शक्तिशाली समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र भाव गढ़ी। प्रधानमंत्री यात्रा को सम्मान जनाई देश में आसंता एकमास व्यापी सेवा संकल्प अभियान आरंभ हो। श्री मोदी यात्रा जनसेवार देश सेवार मंत्र निरंतर प्रतिबद्धता को सूचा। 2047 मसीहा सुधा विकसित भारत लक्ष्य हासिल दिगरे सरकार अनवरत कार्य कर। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण माध्यम यह समर्पण भाव लोकों जीवन में व्यापक परिवर्तन आनीपार। सेवा संकल्प अभियान संपर्क में सूचना दे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते,
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाए। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: यही अभियान अधीन आसंता काली भुवनेश्वर गुप्तेश्वर मंदिर में दीपदान करा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 वर्ष सुशासन को सम्मान देवाई घरे घरे संध्या 6-7 मध्य दीप प्रज्वलन करने को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नवेदन कर। अवसर में सेवा ज्योति यात्रा, नमो सेवा गाथा, स्वप्नर भारत, परिवर्तनर कहानी, विकसित भारत संपर्क यात्रा, चारारोपण और रक्तदान शिविर भली महत कार्य अनुष्ठित हेबो। सुभद्रा योजनार सफल 2 वर्ष पूरण अवसर में आसंताकाली संध्या 6-7 पर्यंत राज्यर प्रत्येक घरे दीप प्रज्वलन करने को उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिडा आह्वान देते। आज लोकसभा भवन स्थित विभाग सम्मेलनी कक्षर एक सांबादिक सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री कहते, गत 2 वर्ष मध्य 5 किस्ती जरिया 1,03,00,000 अधिक महिला बैंक खाता को प्रत्यक्ष सुविधा हस्तांतर डीबीटी मध्यम 25,800 कोटी टंका हस्तांतर कर। संबलपुर, एसबीआई एवं नीति आयोग आकलन अनुसार यह योजना जगू राज्यर 26% ऊर्ध महिला उद्योग आत्मनिर्भरशील होती श्रीमती परिडा कहते। उपमुख्यमंत्री कहते आसंता काली को महिला सशक्तिकरण और आत्मसम्मान संकल्प दिवस भाव पालन होलक्षे राज्यर समस्त समन्वित शिशु विकास योजना आईसीडीएस प्रकल्प, अंगनवाड़ी केन्द्र और सीडीपीओ कार्यालयगुड़िक रंगोली प्रतियोगिता आयोजन एथसह पोषण अभियान मध्यम ओडिशाक 100% कुपोषण मुक्त करी एक सुपोषित ओ विकसित ओडिशा गठन पर विभाग संकल्पबद्ध बोली श्रीमती परिडा कहते। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। भारतीय सिनेमारे बलिष्ठ अवदान पाई किंवदंती कर्णड अभिनेता अनंत नाग 2024 वर्ष पाई पाइबे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका आदि 250 ऊर्ध कन्नड़ चलचित्र निजर निखुण अभिनय प्रदर्शन करी सिनेमा जगत में स्वतंत्र परिचय सृष्टि करी। श्री नाग हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और इंग्रजी भाषा में विभिन्न चलचित्र अभिनय करी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्री नाग को शुभेच्छा जनवा सह सिनेमा जगत को बलिष्ठ अवदान दशंधि दशंधि धरी एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर। धनजीवन सुरक्षा और जलसेचन डप्लर राडार उपयोगी सब्यस्त हो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। संबलपुर गंगाधरमेर विश्वविद्यालय ओडिशार विपर्यय परिचा अत्याधुनिक मेक इन इंडिया डप्लर पाणीपाग राडार शुभारंभ करने प्राय 960 कोटी टंकार 50 विकासमूलक प्रकल्प मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास कर। मुख्यमंत्री कहते 24 घंटा कार्यक्षम होबार दक्षता रखिता यह राडार 250 किलोमीटर परिधि मध्य ठिक तथ्य और 450 किलोमीटर पर्यंत पाणीपागर गतिविधि अनुध्यान करद्वारा संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, सुवर्णपुर, बलांगीर, बौद्ध, नुआपड़ा, अनुगुण, कलाहांडी, केन्द्रझर और ढेंकानाल आदि 13 जिला सह छत्तीसगढ़ और झारखंड किसी अंचल उपकृत हो। प्राक मौसुमी झड़वर्षा, वज्रपात और कुआपथर वर्षार आगुआ सूचना मिलवा पर बरगड़ समेत समग्र महानदी अवहिकार चाषी विशेष उपकृत होते। विद्युत शिल्प

0: ଶୁଣିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମୟ ରାତି 8:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51,00,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51,00,000 एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट।

0: निकलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 3,00,000 रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देशभर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
4: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
1: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग

0: घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता ही सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
1: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
2: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का

गोला माली मोर कोई सुंदरी तोर लागी प्राण जाउछे झुरी तते हेतु करी करी तुई मोके जदी मना करी देले तुई मोके जदी मना करी देले मुई मरी जीवी झुरी झुरी कुरे फूल मौल रस तोल छाली के गुला।

0: नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in